0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपए प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर

0: ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
2: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours।
1: नमस्कार, इस समय ठीक 8:40 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम मस्त मुंबई का। मैं हूँ RJ किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार।

हर भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका हमारा साथ बना रहेगा ठीक 11 बजे तक, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 9 तारीख है, यानी 9 सितंबर। बहुत ही खास दिन है, वो क्या है वो हम बताएंगे थोड़ी ही देर में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS

0: Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जी है, समय ठीक 8:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आज 9 सितंबर है, यानी बहुत ही ख़ास दिन है। तो वो ख़ास क्या दिन है वो हम आपको बता ही देते हैं। जैसे कि हर साल 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुडोको दिवस मनाया जाता है। इस खास तारीख को चुनने के पीछे एक दिलचस्प वजह है। वो क्या है, खास कारण है और वो खास कारण क्या है हम बताएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन तब तक एंजॉय करें इस गाने को। और अगर आपके पास भी इस दिन को लेकर कोई खास बात, कोई खास यादें हैं तो हमें आप बता सकते हैं। लेकिन तब तक सुनिए ना इस गाने को।

8:52 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई एफएम रेनबो 107.1 पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इस खास तारीख को चुनने के पीछे एक दिलचस्प वजह है। जी हाँ, चूंकि सुडोकू का मुख्य गेम 9 पंक्तियाँ और 9 कॉलम का होता है, इसलिए इस साल के 9वें महीने में सितंबर की 9वीं तारीख को 9/9 को इस गेम के लिए सबसे सटीक और प्रतीकात्मक माना गया है। और वर्ल्ड पहली फेडरेशन ने साल 2013 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 9 बजे तक, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो

9:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हर साल 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुडोको दिवस मनाया जाता है, यानी ये गेम ट्रेन में यात्रा के दौरान बहुत पसंद किया जाता है। ट्रेन यात्रा के दौरान सुडोको खेलना यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस गेम को पसंद करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इस गेम के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इसे पेपर, पेंसिल या मोबाइल ऐप पर ऑफलाइन भी खेला जा सकता है। ट्रेन में नेटवर्क न होने पर भी ये गेम नहीं रुकता है, यानी जिस तरह हमारा एफएम रेनबो नहीं रुकता है, हर समय आपको एंटरटेनमेंट करता रहता है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम। रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध।
1: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू। महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी

समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

9:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि अभी हमने कहा कि ट्रेन यात्रा के दौरान सुडोको खेलना यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है, तो आप में से कितने ऐसे श्रोता हैं जो ट्रेन में यात्रा करते दौरान ये गेम खेलना पसंद करते हैं और क्यों, ये भी हमें बताइए। बहुत ही कम शब्दों में लिखना कि आपको ये गेम खेलना पसंद है या नहीं, लेकिन आज के समय में तो लोग बहुत कम इसे खेलते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग खेलते हैं। अभी पेपर के बजाय मोबाइल के ज़रिए लोग खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं। जी हाँ, लंबी ट्रेन यात्राओं में सुडोको खेलने से बोरियत नहीं होती और समय बहुत जल्दी कट जाता है। ट्रेन के शोर शराबे और हलचल के बीच ये दिमाग को एक जगह केंद्रित करने में मदद करता है। ये एक बेहतरीन लॉजिक गेम है जो यात्रा के दौरान गेम को सक्रिय और फ्रेश रखता है। तो जल्दी से बताइए कि आप में से कौन ऐसा है। इस समय तो मैं भाई आपको यात्री ही कहूँगी, क्योंकि हम मुंबई के मतवाले राही कार्यक्रम पर हम बात कर रहे हैं, यानी मस्त मुंबई में आप सुन रहे हैं मुंबई के मतवाले राही। तो भाई आप भी थोड़ी देर के लिए मुंबई के मतवाले राही बन जाइए और हमें बताइए कि दिल से बताइए कि आप में से कौन यात्रा करते समय ये गेम खेलना पसंद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: जी हाँ, इस समय ठीक 9:28 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। यहाँ पर बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने उत्तर दिया है सुडोकू के बारे में कि वो गेम खेलना पसंद करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ श्रोताओं के नाम ले लेते हैं जो इस गेम को खेलते हैं, उन्होंने ये लिखा है। जैसे कि यहाँ पर विजेंद्र घटोल अकोला से लिखते हैं कि वो ये गेम खेलते हैं लेकिन मोबाइल पर खेलते हैं। जी हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि अब लोग पेपर पेंसिल से इस्तेमाल कम करते हैं और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए। और साथ ही प्रणव शिंदे जी हैं, वो भी उन्होंने भी लिखा है कि वो भी खेलते हैं ये गेम। और भी श्रोता हैं जो कि लिखते हैं कि हम लंबे सफ़र में जब जाते हैं तो ट्रेन में ये गेम खेलते हैं और साथ ही गाने भी सुनते हैं। जी हाँ, शुक्रिया। ये लिखते हैं प्रमोद चिंचोलकर जी। तो पंकज महोर जी ने भी लिखा है और साथ ही और भी श्रोता है जो लिख रहे हैं, वो मुझे दिखता है जैसे कि व्हाट्सएप में आपको ऐसे दिखाई देता ना टाइपिंग करके, वो आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, लेकिन तब तक हम सुनेंगे कार्यक्रम का अगला गाना, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत ही छोटा सा है।
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

इस समय ठीक 9:36 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। जैसा कि हमने कहा कि हर कोई ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ ना कुछ खेलते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो कुछ ना कुछ लिखते हैं। कोई कहते हैं कि हम खेलते हैं, कोई कहते हैं कि हम नहीं खेलते हैं, यानी वो केवल गाना सुनते हैं हेडफोन लगाकर। ऐसे ही एक श्रोता है जिनका नाम है रितेश शेट्टी, मालार से लिखते हैं कि वो जब भी यात्रा करते हैं तो वो हमेशा ये गेम खेलते हैं ताकि उनका दिमाग उस गेम में एंगेज रहे, लगा रहे। और इसी तरह एक और श्रोता है राकेश माथुर जी, लिखते हैं कि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ और वो भी FM रेनबो पर। और फिर और भी श्रोता है जो लिखते हैं कि हम ट्रेन में ऐसा कोई गेम नहीं खेलते ताकि दूसरे यात्रियों को तकलीफ़ ना हो, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि ये तो बस आपके अकेले का गेम है, आप अकेले ही खेल सकते हो, अपने दिमाग के साथ खेल सकते हो। जी हाँ, ये गेम बहुत ही सस्ता और सुलभ होता है। जी हाँ, सुडोकू की किताबें या अखबार के पन्ने बहुत ही सस्ते मिलते हैं, इसके लिए किसी महंगे गैजेट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि बैटरी की भी बचत होती है। मोबाइल पर भारी वीडियो गेम्स खेलने से बैटरी जल्दी ख़त्म होती है, जबकि सुडोकू खेलने से फ़ोन की बैटरी बची रहती है। तो इस तरह है हमारा ये प्यारा सा गेम है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

9:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। अंकों की इस पहेली को सुलझाने से यात्रा की थकान और तनाव से ध्यान हट जाता है, जिससे मन शांत होता है। कोई उम्र सीमा नहीं है, इसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी समान रूप से पसंद करते हैं। इसके नियम बहुत आसान हैं, 1 से 9 तक के अंक भरना, लेकिन इसके अलग अलग कठिनाई स्तर होता है, यानी आसान, मध्यम और कठिन, हर बार एक नई चुनौती देते हैं। ट्रेन में सहयात्रियों के साथ मिलकर भी इसे सुलझाया जा सकता है। इस गेम में समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे खेल को रोक सकते हैं और स्टेशन पर यानी स्टेशन आने पर आप चाय पीने के बाद वहीं से दोबारा ये गेम शुरू कर सकते हैं, यानी समय की कोई भी सीमा नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा खेल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गाने की ओर।

52 मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम नमस्ते भारत और इसमें आप सुनेंगे जीते हैं शान से। तो चले एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि फिनटेक की चर्चा यूपीआई के बिना अधूरी रहेगी। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों के घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिमी एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। वॉशिंगटन के अनुसार पिछले 2 दिनों में 1 अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने पड़ोसी बंदरगाहों पर लंगर डाले हुए या बंदरगाहों के अंदर खड़े जहाजों को वहां से निकलने को कहा है। IRGC ने चेतावनी दी कि जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर ब्रिटेन ने भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन ने ये राहत अपनी कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था CBAM के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इनमें इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल है। US ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा निस्काओवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका ने कल रात संघर्षपूर्ण मैच में 7-6, 3-6, 7-6 से जीत हासिल की। पुरुष सिंगल में 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हम वतन अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्स को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, इस समय ठीक 10:03 हुए हैं और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा ठीक 11 बजे तक। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज हमारे फिल्म जगत के जो खिलाड़ी जिन्हें कहा जाता है उनका जन्मदिन है, यानी अक्षय कुमार जी का। तो हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं ये गाना, यानी अक्षय कुमार पर फिल्माया गया है

10:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि हमने कहा कि आज अक्षय कुमार का जन्मदिन है, तो हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से एक से बढ़कर एक फिल्में हमें देखने को मिलते रहें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.
3: 10:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो. अगर आपका लक्ष्य साफ है और उसे पाने की इच्छा शक्ति मजबूत है तो समाज के ताने आपकी राह का रोड़ा नहीं बन सकते हैं. ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर मोहिता शर्मा की कहानी है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिन्होंने ठान लिया था कि वो

माता पिता के लिए ताने की वजह नहीं बल्कि गर्व की वजह बनेंगी। कई मुश्किलें आई, कई बार निराशा हुई, गलतियों से सीखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इसलिए उनकी सफलता देश के अनगिनत बेटियों के लिए मिसाल से कम नहीं है।

इस समय ठीक 10:22 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM रेनबो पर। नमस्ते भारत कार्यक्रम सुन रहे हैं FM रेनबो पर। जी हाँ, कभी कभी आगे पीछे हम बोल देते हैं। अभी हमने नमस्ते भारत में FM रेनबो, FM रेनबो में नमस्ते भारत, ऐसा हो जाता है जब आप गानों में इतने उलझ जाते हैं, इतने सुनने लग जाते हैं, आपको पसंद आने लगता है तो कुछ न कुछ आगे पीछे हो जाता है। लेकिन भाई बात तो एक ही है, FM रेनबो आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं मोहिता शर्मा जी की। मोहिता शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ है। उनके पिता एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड है, जबकि उनकी माँ एक होममेकर है। मोहिता की स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। वे पढ़ाई में बचपन से होशियार रहीं। अपने माता पिता के इकलौती संतान होने की वजह से मोहिता और उनके परिवार को कई तरह के सामाजिक ताने और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बचपन से ही अपने माँ बाप के त्याग को देखा और मन में ये संकल्प लिया कि वो कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो सके।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने मन में ठान लिया था कि मैं अपने माता पिता को गर्व करने का मौका दूंगी ताकि मेरे जन्म के समय लड़के पैदा होने की वजह से उन्हें ताने सुनने पड़ते थे। 12वीं क्लास में अच्छे नंबर्स आने की वजह से मोहिता को भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल गया। उन्होंने साल 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने देश सेवा को चुना। कॉलेज से निकलते ही उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे किरण माला आपके साथ, और हम बात कर रहे थे मोहिता शर्मा जी के बारे में। उन्होंने कई बार यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षाएं दी लेकिन असफल रही, फिर भी हार नहीं मानी और मेहनत करती रही। वो कहती हैं, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं सफ़र में बिना किसी जानकारी के आगे बढ़ती रही। इसी वजह से अपने सपने को पूरा करने में मुझे 5 बार कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि परीक्षा ही मेरे लिए सीखने का जरिया बन गई थी। गलतियाँ करना और उनसे सीखना ही मेरी सफलता का रास्ता बना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
3: तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना और इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आ गई है माला।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 11:19। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की आखिरी बैठक आज से मुंबई में हो रही है। ये बैठक पिछले महीने जयपुर में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की सफल बैठक के बाद हो रही है। फाइनेंस ट्रैक का मार्गदर्शन लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के निर्माण थीम के आधार पर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा है कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के बीच ये बातें कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। इसने द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% का जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिका सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गया। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद पर तब तक रोक लगा दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में समान पहुंच नहीं देता। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आधिकारिक जर्सी का अनावरण भी किया गया। खेल मंत्री ने कहा कि 503 सदस्यों वाले दल में 300 से अधिक खिलाड़ी

एशियाई खेलों में पहली बार भाग ले रहे हैं। एशियाई खेल जापान में इसी महीने आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई, कार्यक्रम ब्रेक फ्री आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर तो आप हमें लगातार सुनते रहते हैं और आज बुधवार की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ जुड़ गई है आपकी दोस्त, आपकी अपनी दोस्त माला। और ये जो आपका पसंदीदा शो है ना ब्रेक फ्री, इसमें आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन वैसे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 चल रहा है, जहां AI और फ्यूचर फाइनेंस की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, कल से जो ये शुरू हुआ है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026, यहाँ पर पूरी दुनिया बात कर रही है कि भाई एजेंटिक AI और डिजिटल टोकन्स क्या है, यानी पैसा जो है वो कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सकता है। पर आपकी दोस्त माला आपसे ये पूछना चाहती है कि ऐप्स के इस ज़माने में जब लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड पर है, क्या हमारा स्ट्रेस भी उतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है? डिजिटल वॉलेट्स तो फुल हो ही रहे हैं, लेकिन क्या मेंटल पीस का वॉलेट भी खाली हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? तो चलो आज इस डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा सा ब्रेक फ्री होते हैं और दिल का बैलेंस चेक करते हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरी बार आपने कब बिना फ़ोन देखे हुए चाय सुकून से पी थी?

0: तो भाई पैसे की तो बात हो ही गई, क्योंकि AI समिट चल रहा है और हम सीखने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके जिनसे कि हम बहुत जल्दी से जल्दी जो मनी जो ट्रांसफर का जो मोड है वो और फास्टेस्ट हो जाए। तो अगर टाइम मिले तो ज़रूर जाइएगा इस AI समिट में। और इसके अलावा आप फिलहाल तो हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन AR पर आप हमें लगातार सुन रहे हैं। अमित भगत जो है वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और दरवाह मालेगांव से इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाई है, और वो साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि 4 दिनों से चाय पीते मोबाइल मैंने नहीं देखा है। वाह क्या बात है, क्योंकि मुझे सुबह जो है खेत को पानी देने जाना पड़ता है, तो मतलब आप पानी देते देते खेत में चाय पीते हैं इसका मतलब। और ये मैसेज हमारे पास आया है आकांक्षा मनोज सिन्हा का अहमदाबाद से, राम प्रजापति वसई से, अंजू अंधेरी ईस्ट से जुड़ गई हैं हमेशा की तरह, और धनंजय नवी मुंबई से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। यशवंत आडमुठे हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम फोन पर बिल्कुल गेम नहीं खेलते, हम सिर्फ गाने सुनते हैं वो भी FM रेनबो के। तारा शिव से वाशी से इन्होंने हमें मैसेज किया है। विजेंद्र खटोल अकोला से चाय का प्याला इन्होंने हम तक पहुंचाया है। संजय दर्शन जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई चाय वो हमेशा सुकून से ही पीते हैं और एक एक सिप जो है मारकर पीते हैं मोबाइल के बिना। विजयलक्ष्मी शेट्टी भी जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं कि भाई हम कभी सुकून से चाय नहीं पी पाते और क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ और सुकून मुझसे बहुत दूर रहता है इवन इस एज में भी। 72 इयर्स की है वो और तब भी वो कह रही हैं कि वो बहुत बिजी रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कहते हैं कि जब दिल चीज़ों में लगा रहे तो हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती और हम किस तरह से समय बिता लेते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो विजयलक्ष्मी शेट्टी जो है चेंबूर बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ी है, और ये मैसेज प्रमोद चिंचोलकर का है और ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। बढ़िया सी इन्होंने एक फ़ोटो हम तक पहुंचाई है। और राकेश माथुर, शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कह रही हैं गुड आफ्टरनून, चाय सुकून से पी थी आज क्योंकि हमेशा सुबह को ही चाय पीती हूँ, इसके अलावा दिन भर में चाय नहीं पीती। राकेश माथुर कह रहे हैं कि भाई सुबह के शो में तो ज़्यादातर पुराने गाने होते हैं, सुकून भरे होते हैं, और मैं सुबह की चाय पीते समय ये गाने सुनते हुए सुकून से चाय पीता हूँ। प्रणव शिंदे भी जुड़ गए हैं प्रकाश शिंदे के साथ, वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने मोबाइल देखे बिना चाय कब जो है पी थी, हाथ में आई थी बाबा दादर से। अमित भगत तो सुन ही रहे हैं, पंकज मोहट भी जुड़ गए हैं। इससे पहले कि अगला गाना हम आप तक पहुँचाएं, एक छोटा सा commercial break.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
3: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू,
2: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि,
3: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

तो भाई दिल तो अब चल चुका है फेस्टिवल सीजन की ओर, तो फेस्टिवल मोड जो है वो ऑन हो ही चुका है। और बाबा के आने से पहले का जो स्ट्रेस होता है, प्री फेस्टिव प्रेप और सारी तैयारियां जो होती हैं वो, क्योंकि 14 सितंबर से गणेश उत्सव जो है वो शुरू होने जा रहा है और मुंबई में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख भी चुके होंगे गणपति बाप्पा को पहले से ही अपने पंडालों में पहुँचते हुए। तो भाई मुंबई कर्स बस कुछ ही दिन बचे हैं और हमारे प्यारे से बाप्पा घर आने वाले हैं। हर तरफ पंडाल सज रहे हैं, घर की साफ सफाई चल ही रही होगी और मोदक की तैयारियां भी टॉप गियर में है कि नहीं है। लेकिन इस बीच क्या आप शॉपिंग, डेकोरेशन और काम की भागदौड़ में अपनी नींद और सेहत को भूल गए हैं क्या? बप्पा तो सुखकर्ता दुखहर्ता हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके स्वागत की फिक्र में आप बीमार हो जाएं। तो आज के इस ब्रेक फ्री में तैयारियों के बीच एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए और खुद को दें एक रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्री मोमेंट इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ.
2: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती.
3: 2 ते 10 डिसेंबर 2026. इतिहास, संस्कृती, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम.
2: अंकोर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य.
3: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, शाकाहारी भोजन.

0: तो भाई त्योहार में इतने ज्यादा मत मलंग हो जाइएगा कि जो गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं वो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। वैसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री, साथ बनी हुई है आपके आपके दोस्त माला, और जो धाराएं लगी हुई हैं उसके तहत पांच लोग जो हैं वो 9 सितंबर से 23 सितंबर तक नहीं बाहर घूम सकते हैं, इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते हैं। और आज 9 सितंबर से जो है शांति बनाए रखने के लिए ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं इन पर पूरा ध्यान रखिएगा। त्योहार का सीजन है, अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे भी भीड़ अगर जमा हो जाती है तो वैसे ही कानून जो है अपने हाथ से फिसल सकता है। चिंताओं का हुजूम, कल की फिक्र, ऑफिस का काम, क्यों ना आज जो है अपने अंदर के जो टेंशन है उसे बाहर निकालते हैं, और फालतू के विचारों की भीड़ को हम नो एंट्री कहते हैं और खुद को देते हैं थोड़ा सा मी टाइम कार्यक्रम ब्रेक फ्री के साथ, क्योंकि बनी हुई है आपके साथ आपकी अपनी दोस्त माला, और आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बड़े प्यार से आप हमें इतने सारे मैसेजेस भेजते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या पढ़ दें और क्या छोड़ दें। ये मैसेज आया है फिरोज सिगिनपुरिया का, उन्होंने कहा है कि हैव अ म्यूजिकल डे आपको भी, और गणेश पाटिल वाड़वन से टिगरेपाड़ा से रोशन पाटिल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये मैसेज है हमारे पास समीर पठान का वाल सावंगी महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि भाई आज के समय में मोबाइल हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, पढ़ाई भी कर सकते हैं, परिवार से दोस्तों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा जो उपयोग है वो सच में नुकसानदायक होता है। सुरेश काशीनाथ और अविनाश कडू, ज्योति वैश्वी भी है साथ में वाड़वन टिगरेपारा से, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विजेंद्र घटोला कोला से हमें सुन रहे हैं, उन्हें गाने पसंद आ रहे हैं, और अक्षय कुमार को ये जन्मदिन की बेहद शुभकामनाएं दे रहे हैं। अजय साखरे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज महोड़ सुन ही रहे हैं कार्यक्रम अमरावती से, प्रमोद चिंचोलकर, अशोक पाटिल वर्ली से आप सभी का, और वर्ली से अशोक पाटिल के साथ राजेश मोरे कोलीवाड़ा वर्ली से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि अगला गाना हम आपको सुनाएं, एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम लेंगे और फिर आपको सुनाएंगे खूबसूरत सा नगमा।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
3: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
2: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
3: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम. रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध.
2: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू. महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट. शर्तें लागू.
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध.
4: तो भाई जब हम आज ब्रेकफ्री में आपको चिंताओं से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, फेस्टिवल मोड में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इतना काम मत कीजिए, इतनी तैयारियां मत कीजिए कि पूरी तरह से थक जाएं, तो आपको ये भी बता दें कि भाई बढ़ा हुआ किराया और जो लाइफ की जो रफ्तार है वो हाल ही में यानी कि 1 सितंबर से मुंबई में ऑटो और काली पीली टैक्सी का किराया बढ़ चुका है, ये तो आपको पता ही चला होगा. और एक किलोमीटर के हिसाब से एक किराया बढ़ा है, तो आज आप रोज़ मीटर देखते हुए महसूस करते ही होंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है और किराए को वसूलने के लिए लाइफ की रेस में और भी आप तेज़ी से भाग रहे हैं. लेकिन याद रखिए कि मीटर सिर्फ ऑटो का नहीं, हमारी उम्र और सेहत का भी भाग रहा है. पैसे कमाने की इस महंगी दौड़ में अपनी सेहत को बिल्कुल भी दांव पर मत लगाइए. मीटर की चिंता छोड़िए, मेरे साथ गाने ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए कार्यक्रम ब्रेक फ्री पर. आज ऑफिस जाने के लिए जो है ऑटो का मीटर देखते हुए किस किस को टेंशन हुई, ये आप हमें बताइए इस नंबर पर 8657661071 यानी कि 8657661071.
5: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों, अरे मध्यन भाई छगन भाई सांबड़ो रे.

तो भाई आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर बात हमारी भी रफ्तार रफ्तार आगे बढ़ ही चली है, क्योंकि काजल कक्कड़ भी जुड़ गई हैं चेंबूर से, राजेंद्र जुठानी भी हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं, और पंकज महोड़ जो हैं वो भी सुन रहे हैं कार्यक्रम, राजेंद्र परमार भी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का जो ये जो कंपोज किया हुआ गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में जो उन्होंने गाया है, मज़ा कर रहे हैं उसे सुनकर, विजेंद्र घटोला कोला से हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं और गाने उन्हें पसंद आ रहे हैं। तो वैसे सितंबर के इस मौसम में मुंबई में उमस, छिटपुट बारिश और मौसमी बीमारियां जो हैं वो चर्चा में हैं, जैसे कि ये जो बीमारियों का सीज़न है बारिश के जाते जाते जो है बढ़ जाता है, उमस भी ज़्यादा हो जाती है। तो बीएमसी तो एक्टिव है ही, आपको भी थोड़ा अपनी सेहत को लेकर एक्टिव रहना चाहिए और ख़ुद को अलर्ट देते हुए छोटी मोटी खांसी थकान अरे कुछ नहीं है कहकर टालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है ख़ुद पर ध्यान देने की, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज शो ब्रेक फ्री है तो इसमें लेते हैं हम एक छोटा सा संकल्प कि आज रात हम काम को थोड़ा सा जल्दी अप करेंगे, अच्छी सी डाइट लेंगे और अपने शरीर को वो आराम देंगे जिसके हम हकदार हैं। सेहत से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त जो है वो आगे इस घंटे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा है। हम आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपकी अपनी दोस्त माला आपके साथ बनी रहेगी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz Musically yours।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 12:32। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने कहा है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू होने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि हाल की पहल से यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। इससे तत्काल पूर्ण और बिना किसी शर्त के युद्ध विराम का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दो राष्ट्र समाधान की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि दो राष्ट्र समाधान मध्य पूर्व और उससे बाहर शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मिजोरम के सेतुअल जिले ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मोबिलाइजेशन एड्स सुरक्षा अभियान के तहत सुरक्षित का दर्जा हासिल कर लिया है। इसके साथ ही सेतुअल मिजोरम का ऐसा पहला और एकमात्र जिला बन गया है जिसने एचआईवी से जुड़े 95 95 95 के तीनों लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने ठाणे में प्रस्तावित डेटा सेंटर और आंतरिक रिंग मेट्रो परियोजना का कड़ा विरोध किया है और इन्हें लेकर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जताई हैं। प्रस्तावित डेटा सेंटर स्थल बालुकम के पास स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के बीचों बीच 53 एकड़ क्षेत्र में इस तरह की परियोजना का निर्माण उचित नहीं है। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो भाई आप जानते ही हैं कि यह है आपका अपना पसंदीदा चैनल आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ और कार्यक्रम म्यूजिक कैफे लेकर जुड़ गई है आपके साथ आपकी दोस्त माला। और आज म्यूजिक कैफे में एक छोटा सा हम खेल खेलेंगे कि मैं लूंगी एक गाने का नाम और आप अपने मन में उस गाने से जुड़ी तस्वीर बनाइए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो आंखों के सामने पूरा एक सीन बना देते हैं। ऐसा ही होता है ना, कभी बारिश दिखाई देती है, कभी कोई सड़क, कभी किसी की मुस्कुराहट और

भी अपना ही बीता हुआ कल याद आ जाता है। मैं हूं माला और आज का म्यूजिक कैफे इसी खूबसूरत इमेजिनेशन के नाम, जहां हर गीत अपने साथ एक तस्वीर लेकर चला आएगा। तो चलिए पहला गीत आपको सुनाते हैं और देखते हैं कि आपके मन में पर्दे पर कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। लिख भेजिए मुझे 8657661071 पर, 8657661071 पर

तो भाई परदेश फिल्म का ये गाना था जिसे आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। तो हमारे पास जो मैसेज पहुंच गए हैं वो है प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे का तो मैसेज हमारे पास आ ही गया है। शुभदा भी जुड़ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून कह रही हैं। पंकज मोहड़ कह रहे हैं कि भाई इस गाने को सुनने के बाद शाहरुख खान और महिमा चौधरी की जो इमेज है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। और साथ ही साथ अभिनेता अक्षय कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ उन्होंने पहुँचाई हैं। वहीं ये मैसेज विजय लक्ष्मी शेट्टी का है, वो कह रही हैं कि भाई अपने बचपन के जो पप्पी हैं उन्हें उनका जो प्यार है वो हमें याद आ जाता है। चेंबूर से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। काजल कक्कड़ भी सुन रही हैं कार्यक्रम हमारे साथ। और प्रमोद चिंचोलकर कह रहे हैं कि भाई ये परदेश फिल्म का ट्रैक उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उमरी अकोला से हमारे साथ जुड़े हैं। और महिमा और शाहरुख खान की याद आती है बाबा को, दादर से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। वहीं विजेंद्र खटोल अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पाटिल वर्ली से, और ये कह रहे हैं कि भाई हम इन्होंने कुछ मैसेज लिखा है जो हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपसे कुछ और बात करें। और बात यह है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जब हम अपने घर में भी बैठे होते हैं, या अपने घर में या मुंबई में भी हम बैठे हुए हैं, तो वो गाना हमें कहीं किसी पहाड़ी रास्ते पर पहुँचा देता है, तो कभी किसी समंदर के किनारे। संगीत का यही तो कमाल है कि टिकट नहीं चाहिए, सूटकेस नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, बस चाहिए सुर। और एक धुन शुरू होती है और हमारा मन अपनी पसंद की डेस्टिनेशन चुन लेता है। तो आज अगर काम के बीच आपका मन कहीं दूर निकल जाना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए भी रोकिए मत। म्यूज़िक कैफे की अगली जो म्यूज़िकल जर्नी है वो शायद आपको किसी और फेवरेट जगह तक आपकी लेकर चली जाए इस गाने के साथ।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

तो भाई सोच में पड़ने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे और लगातार साथ बनी हुई है आपके आपकी दोस्त माला और हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चल रहे हैं जब हम गाने सुनते हैं और उस गाने के साथ हमारे दिमाग में कोई ना कोई याद चली आती है या कोई इमेज उभर आती है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जब हमें कोई इंसान याद आता है, शायद कोई दोस्त जिसके साथ घंटों पहले बातें हुआ करती थी, कोई पुराना साथी या घर का कोई अपना। दिलचस्प बात यह है कि उस इंसान से जुड़ी कितनी ही बातें हम भूल जाएं, लेकिन वो गाना बजते ही पूरी कहानी उससे जुड़ी हमें याद आ जाती है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है, कोई मेमोरी है, तो भाई हमारे साथ शेयर कीजिए उस खास इंसान का नाम, ताकि हम जो है आपकी उस याद का दरवाज़ा खोल दें इस छोटे से आधे घंटे में जो समय हमारे पास बचा है। एक गाना हम आपको सुनाएंगे और एक और गानों से जुड़ा किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप जो है ये गाना एंजॉय कीजिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

में आप सुनेंगे हमारा रोज आने वाला कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग, और उसके बाद 1 बजे होंगे मराठी में समाचार, और उसके बाद आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएगी आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम हिट एंड हॉट।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था।

0: रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर गुड सर।
3: आई एम गुड सर।
4: वी आर गुड।
1: हाउ आर योर पेरेंट्स, brothers, sisters and grandparents?
2: All are good.
1: All are well? That's nice. And what about your pets?
4: Sir, I have a dog.
3: Sir, we have a cat.
1: Okay, so how does a cat call?
2: Meow!

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूं। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
7: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
8: चलो
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
6: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
8: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
6: अच्छा
8: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
7: दादाजी मैंने देखी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
7: जब माँ के साथ नाना जी को
9: लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
8: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
9: अरे वाह,
8: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
9: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
8: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
10: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
8: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
10: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
8: बैठो बैठो, जल्दी खड़े हो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
10: उतरो उतरो।
9: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
8: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
6: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
8: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
6: अच्छा तो ये बात है।
8: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
11: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।

0: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा।
2: अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
3: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक

बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक

अब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है, गांव गांव और शहर शहर

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। बने रहिए हमारे साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह है आपका अपना आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM कार्यक्रम हिट एंड हॉट। 1:05 और ठीक 45 सेकंड हो चले हैं। जुड़ गई है आपके साथ आपकी दोस्त माला लेकर ये खूबसूरत सा कार्यक्रम जो होता है पूरी तरह से आपका अपना, क्योंकि इस घंटे में आप हमें भेजते हैं गानों की रिक्वेस्ट और कुछ कहानियां जो हम शेयर करते हैं आपके साथ इस घंटे में। तो नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, 8657661071, यानी कि 8657661071। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और चाहें तो अपनी पसंद का गाना या कोई गाना जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे जो पहला गाना है वो है फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है से, क्योंकि आज अक्षय कुमार साहब का जन्मदिन है तो जन्मदिन की उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सारे गाने जो हैं उनको डेडिकेट किए गए हैं। तो सबसे पहला गाना प्रमोद चिंचोलकर की फरमाइश पर एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

विजेंद्र खटोल ने अकोला से इस गाने की फरमाइश की है, जिसे उन्होंने भेजा है मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी से, और गाने को गाया है उदित नारायण ने।

तो भाई आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबकी पसंद के गाने हम सुना पाए। फिलहाल ये मैसेज हमारे पास आया है प्रणव शिंदे का, प्रकाश शिंदे का। इन्होंने एक कहानी भेजी है, वो कहानी हम आपको सुनाते हैं। ये कहानी है श्रीधर फड़के जी की। सुधीर फड़के जी के पुत्र हैं वो, और संगीत की उन्होंने, सुधीर फड़के साहब ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा तो ली नहीं थी। वो 1970 के दशक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका चले गए। एक संगीत सम्राट संगीतकार का बेटा होने के कारण लोग हमेशा उनसे ये उम्मीद करते थे कि अपने पिता की तरह गाएं या संगीत बनाएं। जब वो अमेरिका में थे तब उन्होंने पहली बार दूरदेश में बैठे बैठे एक भक्ति गीत देवाचिये द्वारी के लिए एक धुन तैयार की। उन्हें बड़ी हिचकिचाहट थी कि संगीत के दिग्गज उनके पिता इस धुन को पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन जब बाबूजी ने अमेरिका के एक कार्यक्रम में उस धुन को सुना और वो खुश हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए वो धुन सुनकर, तो उन्होंने न केवल अपनी सहमति दी बल्कि खुद उस धुन को अपने लाइव शो में गाया भी। बाद में यही गीत सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में आइकॉनिक एल्बम ओंकार स्वरूपा के लिए रिकॉर्ड किया गया, जिसने इतिहास भी रचा। तो भाई अपनी कॉरपोरेट लाइफ के अलावा संगीत साधना दोनों को उन्होंने एक साथ निभाया। उन्होंने कभी भी पिता के काम की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिता ने भी उनसे कहा था कि वो अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करें। नतीजतन उन्होंने ऋतु हिरवा, अंधारा छे जाले जैसी बेहतरीन रचनाएँ दी और फिल्मफेयर पुरस्कार पाए और अपना नाम बनाया और साबित किया कि विरासत सिर्फ नाम से नहीं अपनी लगन से आगे बढ़ती है। उन्होंने वही किया जो उन्हें स्वाभाविक लगा, और ये कहानी हमें ये सीख देती है कि दुनिया चाहे आपकी तुलना किसी से भी करे, आपको अपनी सहज क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। बिना किसी औपचारिक संगीत प्रशिक्षण के भी उन्होंने भारतीय संगीत जगत को प्लैटिनम डिस्क जीतने वाले एल्बम दिए। अगर आपके अंदर भी कोई कला के प्रति सच्चा समर्पण है तो अपने संसाधनों या औपचारिक ट्रेनिंग को कभी की कमी को कभी भी जो है ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। अपने टैलेंट को आप और भी उभार सकते हैं, और ये दिखाता है कि अपनी आजीविका और अपने पैशन के बीच संतुलन बनाना जो नामुमकिन सा समझते हैं वो बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। आज संगीतकार और गायक श्रीधर फड़के साहब का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं बधाई। और अक्षय कुमार साहब भी अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो एक गाना प्रकाश शिंदे ने हम तक पहुंचाया है, तो सुहाग फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 FM। कार्यक्रम आपका अपना हिट एंड हॉट, और साथ बनी हुई लगातार आपकी दोस्त माला।

अमित भगत ने दरवा वाले गांव से ये गाना जो है फिल्म फिर मिलेंगे से की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। इस गाने को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना हिट एंड हॉट।

0: तो भाई अब हो रहा है वक्त मराठी में समाचार का और आपसे फिर होगी मुलाकात 1:40 पर, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।
1: मराठी बातम्या त्यानंतर जळगाव जिल्ह्याचं वार्तापत्र।

वैसे ये गाना तो फिल्म दिल बोले हड़प्पा से है, लेकिन इस गाने को गाया अलीशा चिनॉय ने और सुनिधि चौहान ने। और पिछले साल 10 सितंबर को अलीशा जी हमारे स्टूडियो में आई थी और हमने उनसे खास बातचीत की थी आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर, और ये हमें याद दिलाया पंकज महोड़ ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये खूबसूरत नगमा था। अब जो अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसकी फरमाइश संजय दर्शन ने हमसे की है, और केसरी फिल्म का टाइटल ट्रैक वो सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अक्षय कुमार साहब इस गाने में बहुत पसंद आए थे।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। 1:52 और ठीक 33 सेकंड हो चले हैं और अब वक्त है आप सभी के मैसेजेस शामिल करने का। ये मैसेज हम तक पहुंचा है काजल कक्कड़ का चेंबूर से। कार्यक्रम वो एंजॉय कर रही हैं और साथ ही उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। शब्दों की खूबसूरती तो देखिए, लाभ का उल्टा करो तो भला होता है और दया का उल्टा करो तो याद होता है। इसलिए कहा गया है कि भला करके देखो तो हमेशा लाभ में रहोगे और दया करके देखो तो हमेशा याद रहोगे। वाह, क्या बात आपने लिख डाली है। राकेश माथुर, आपकी पसंद का गाना। अशोक पाटिल और राजेश मोरे वर्ली कोलीवाड़ा से भी, आप दोनों ने, तीनों ने इनफैक्ट खिलाड़ी फिल्म के गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, हम आपके लिए ज़रूर बजाएंगे। वहीं गुरमीत सिंह, मीता सिंह साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। अभिजीत गावणकर के साथ जुड़े हुए हैं सरिता, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश और लाडला टुक टुक गावणकर मेहर नगर उमेर खेड़ महाराष्ट्र से। और फिर उससे गिनपुरिया तो आप हमें सुन ही रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश भी हम पूरी कर पाएं। फिरोज जी, इतेंद्र दास सुन रहे हैं हमें और असम से इनका मैसेज है। वही मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें सुन रहे हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी का गाना हमने बजाया। प्रिया छत्तीसगढ़ से सुन रही हैं, बाबा दादर से, निशा रत्नागिरी से हमें सुन रही हैं। वहीं गणेश मगर मुंगी पैठण से जो है वो फ़ोन रिचार्ज करने के बाद हमारे गाने आज सुन पा रहे हैं। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जो है हमें सुन रहे हैं ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से। मिंटू थॉमस, पंकी, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा जो है वडिंग खेड़ा से पंजाब से हमें सुन रहे हैं। शुभदा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अक्षय कुमार साहब को बर्थडे की जन शुभकामनाएं दे रही हैं। सुधीर यादव हमें सुन रहे हैं सतारा वाइस से और आकांक्षा मनोज सिन्हा हमसे अहमदाबाद से जुड़ी हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है सेक्टर 67

मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदीप कुमार भी हमें सुन रहे हैं। वहीं संदीप पक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुराया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरजिंदर छिंदा जसवीर भी, जसवीर जसी, सीता गीता फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। मेहर अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं। शुभलक्ष्मी वस्तकार सुन रहे हैं। दी कास्तो जॉन भी सुन रहे हैं हमें। रोजी डी कैस्ट्रो, पल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो भी सुन रहे हैं। ये जगह जनकपुरी सहारनपुर, बहुत सारे मैसेजेस हैं। गोपे झारखंड से, शिवा, प्रेम, कपिल, शिवांग, संगीता, लिपि, दीपाली, गोप सुन रहे हैं हमें झारखंड से। और ये है भूमिति मधे, कहाँ से आप जुड़े हैं हमारे साथ। ओमेगा उमरगा धारा शिव से सुन रहे हैं। प्रमोद चिंचोलकर विठल मुंगे से, यशवंत आडमुटे, अजय साखरे इंदौर से, अशोक पाटिल वर्ली से, स्नेहा भी वर्ली से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो गाना हम प्ले कर रहे हैं उसकी फरमाइश राकेश माथुर, अशोक पाटिल, राजेश मोरे ने वर्ली कोलीवाड़ा से की है। इंजॉय कीजिए अभिजीत की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा कार्यक्रम हिट एंड हॉट के माध्यम से।

तो भाई आपसे ये वादा है आपकी दोस्त माला का कि हमारा जो फसाना है वो कभी खत्म नहीं होगा, हम हमेशा आपके साथ इतने प्यार से और आपके प्यार के साथ जुड़ते रहेंगे। आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम 24/7 आप लगातार सुनते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अपना काम करते हुए भी आप हमें सुनते हैं। बस ये प्यार हम तक पहुँचाते रहिए, हम भी अपना प्यार आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वादे के साथ आपकी दोस्त माला लेगी आपसे इजाजत, जल्द ही होगी फिर मुलाकात एफएम रेनबो पर।

0: Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारदेसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारदेसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के

0: कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में

0: अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न

ब्राह्मण ब्राह्मण द्याव्यामदन घडेल तुझ पुण्य ए

हम क्या जाने वो ही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। इस खूबसूरत गीत के बहुत खूब लाइनों के साथ शुरुआत होती है अपने आज के लव यू जिंदगी कार्यक्रम की। मैं हूं आपका, हाँ जी, सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। और बेशक आप जुड़े हो अभी मेरे साथ और कई सालों से एफएम रेनबो 107.1 के साथ, जो कि है म्यूजिकली योर्स। बने रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आप।

वेलकम बैक दोस्तों, समय हुआ है 5:20 और बहाने भले 10 किए हों मैंने, लेकिन तारीख आज की है 9। 9 में भी खास बात, मतलब पूरी तारीख को अगर हम जोड़े तो उसकी टोटल फिर से 9 ही आएगी, यानी दिन 9वां, महीना भी 9वां और बरखुदार पूरा आंकड़ा भी 9वां। इसी नोट पर शुरू करते हैं जाल आंकड़ों का। घबराइए नहीं, कोई मायावी काम नहीं, बल्कि करेंगे कुछ मजेदार बातें जो है अंक शास्त्र से जुड़ी हुई। सुनेंगे सुनाएंगे किससे नंबरों से जुड़े हुए, मगर हमेशा याद रखिए एक नंबर 107.1 जो है आपका FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: तो स्वागत है फिर एक बार सभी का लव यू जिंदगी के जाल आंकड़ों का इस खास प्रस्तुति में। आज का दिन है सब कुछ नौ वाला और इसी बात पे हमारे जो श्रोता हैं प्रणव शिंदे जी, इन्होंने याद दिलाया कि आंकड़ों का मजा जो है वो हमारे चैनल के फ्रीक्वेंसी में भी है, 107.1 यानी टोटल करे तो 9 यही आंकड़ा है। और 9 तारीख 9 सितंबर ये अक्षय कुमार जी जो है उनका भी बर्थडे है, तो उनके लिए हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं एफएम रेनबो की तरफ से। तो ये जो याद हमें दिलाया था ये विजेंद्र घाटोल जी ने, तो आगे बढ़ाते हैं अपना कार्यक्रम आंकड़ों का जाल। आंकड़ों का जाल यानी हम सभी सब तरफ नंबरों से, आंकड़ों से घिरे हुए हैं। तारीख हो, दिन का पहर हो, भोर हो या सहर हो, शाम हो या दोपहर हो, सबका पता हमें आंकड़ों से ही चलता है। वैसे गणित थोड़ा कठिन लगता है, किंतु अगर संख्याएं सहज हो तो गणित भी सरल ही लगता है ना, वरना सरदर्द ही लगता है क्यों। घड़ी के कांटे हो या हम, या कोई लैब का मीटर या शेयर मार्केट का टीकर, चलते तो है संख्याओं की राह पे। फास्टैग हो या गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड से दिए पैसे या दिए हो कोड स्कैनर कर स्कैन पे, सब कुछ चलता है सिर्फ दो ही आंकड़ों से, शून्य और एक। टाइप भले कर सके लाखों अरबों आंकड़े ये कंप्यूटर और कैलकुलेटर, किंतु ये बोंधू समझ सके सिर्फ शून्य और एक का ही मीटर। है ना मजा इन आंकड़ों का। सुनते रहिए ऐसी ही मजेदार बातें एफएम रेनबो 107.1 पर, जो है म्यूजिकली योर्स।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: स्वागत है फिर एक बार सभी का लव यू जिंदगी के आज के खास कार्यक्रम जाल आंकड़ों का। साथियों, इंडिकेटर पर दिख रहा ट्रेन का समय हो या ट्रैफिक में फंसा 10 से ऊपर उठने की हजारों कोशिशें करती स्पीडोमीटर की सुई, ट्रैफिक में जगह जगह पर रुका हुआ फिर भी धनाधन दौड़ता लाल कलर में ब्लिंक करता हुआ रिक्शा टैक्सी का मीटर हो या पेट्रोल पंप पर सपक सपक आवाज करता लीटर का मीटर हो, सब दिखाते हैं सिर्फ आंकड़े, नंबर्स। और कितना भी बड़ा नंबर हो, भले हम वो पूरा गिन पाए या नहीं, मगर वो बना होता है सिर्फ 10 में से किन्हीं आंकड़ों से। यही जिंदगी को भी लागू होता है दोस्तों। कितनी भी बड़ी मुसीबत या तकलीफ हो जो हल ना होती हो, तो बस उसके जड़ तक पहुंचा जाए तो मिलती कोई छोटी ही बात है। बस जड़ तक जाने की देरी है। बने रहिए जिंदगी और आंकड़ों के साथ। लव यू जिंदगी में।

वेलकम बैक लव यू जिंदगी के इन आखिरी कुछ पलों में संख्याओं की नंबर्स की बात चल रही थी हमारी। दोस्तों, शून्य और एक में से शून्य को दुनिया में भारतीय गणितज्ञों ने गिनती में जरूर लाया हो, किंतु दुनिया भर में एक इस संख्या को भी बहुत महत्व है। इतना कि 11 नवंबर यानी 11/11 इस तारीख को सिंगल्स डे मनाया जाता है। उसका कारण ही ये माना जाता

होता है कि एक ही तारीख में इतने एक लोग अकेले अकेले साथ में बैठे होते हैं, मतलब एक एक एक अकेले, ऐसे चार लोग तो ऐसे ही बैठे, मतलब एक आंकड़ा, एक यही आंकड़ा इतना लोकप्रिय हुआ था एक यूनिवर्सिटी में कि 11-11 इस दिन के 24 घंटों में दुनिया भर में अरबों रुपयों की खरीदारी हुई थी सिर्फ सिंगल्स डे को मनाने के खातिर। देखिए और समझिए एक की पावर।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक आंकड़े से जुड़ी खास दिन के सेलिब्रेशन की। वैसे खास दिनों की बात करें तो 9 सितंबर को दुनिया के कई जगहों पर ट्रायो डे करके भी मनाया जाता है, जो होता है तीन की तिगड़ी के नाम। तीन की तिगड़ी मतलब तीन खास दोस्त, तीन साथी, जो कुछ भी हो किसी भी हालत में साथ में ही रहते हैं। ऐसी दोस्ती और ऐसी यारी जो सालों तक, कहो तो आखिरी सांसों तक भी साथ रहती है। ना तो बहुत ज्यादा फोटोज, ना ढेरों व्हाट्सएप मैसेजेस, ना ही लाइक्स या बहुत ज्यादा कॉल्स, मगर जब साथ मिल बैठते हैं, बस ट्रेन या सड़क, बस हो या ट्रेन हो या सड़क के किनारे की कोई पुरानी चाय की टपरी भी एक जिंदा दिल महफिल में तब्दील हो जाती है। तो तीन इस अंक का यह भी एक अलग पहलू है। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक दोस्तों, बेशुमार दोस्ती के गीतों के साथ स्वागत है लव यू जिंदगी के जाल आंकड़ों का इस विशेष प्रस्तुति में, मेरे यानी सिर्फ आपके आरजे आदित्य धाईगुड़े के साथ। दोस्तों, वैसे तो हमने आंकड़ों की, नंबर्स की, दोस्ती यारी की काफी बातें कर ली, अगर समय बचता भी है तो और भी बातें करेंगे, मगर समय समाप्ति की घोषणा होने से पहले आपको बता दूं कि कुछ ही देर में चलेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद शुरू होगा 6:15 को शुरू होगा कार्यक्रम अंदाजे बयां। तो सुनते रहिए FM रेनबो 107.1, म्यूजिकली योर्स।

कभी कभी प्रेम भी एक बंद दरवाजे की तरह सामने खड़ा होता है, ना भीतर की खबर होती है ना आने वाले कल का कोई आश्वासन। फिर भी हृदय दस्तक देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हर अनजान दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं होता। कभी कभी वहां वो व्यक्ति होता है जिससे मिलकर जीवन पहली बार अपना सा लगता है। अंतरंग पाठक की ये रचना, वाह क्या खूब लिखा है। इसी खूबसूरत नोट पर शुरुआत करते हैं सफर अंदाजे बयां का।

0: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: स्वागत है फिर एक बार सभी का अदब की इस महफिल यानी अंदाजे बया में। मैं हूं सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। वो मेरी खामोशी में छुपा इश्क पढ़ लेता था और मैं उसकी खामोशी में छुपा फासला। वो मेरी खामोशी में छुपा इश्क पढ़ लेता था और मैं उसकी खामोशी में छुपा फासला। हम जब भी बैठते थे आमने सामने, उसकी मुस्कान में एक अनकही हिचकिचाहट थी, जैसे वो मुझे खोना भी ना चाहे और अपना बना भी ना सके। ना उसने कोई झूठ दिलासा दिया, ना कोई उसने झूठा दिलासा दिया, ना मैंने कोई हक मांगा। हम तो बस वो दो मुसाफिरों की तरह निकले जो एक ही छत के नीचे रहकर भी अलग अलग मंजिलों की तलाश में थे।

स्वागत है फिर एक बार आपका ही कार्यक्रम है और मैं हूं आप ही का आरजे आदित्य दाई गुड़े और कार्यक्रम है अंदाजे बयां। डॉक्टर ऋषि अग्रवाल सागर जी लिखते हैं, तेरी कहानी का जो भी पन्ना खुले उसमें मेरा भी थोड़ा इस हिस्सा हो। तेरी कहानी का जो भी पन्ना खुले उसमें मेरा भी थोड़ा हिस्सा हो, जिक्र चाहे पूरी दुनिया का आए पर हम दोनों का भी एक हिस्सा हो। तुम लिखो जब भी अपनी मुस्कान को तो लफ्जों में कहीं मेरा नाम आए। तुम लिखो जब भी अपनी मुस्कान को तो लफ्जों में कहीं मेरा नाम आए। जब भी याद करो तुम गुजरा कोई पल, बस चुपके से मेरा ही ख्याल आए। चाय की प्याली से उठती हुई भाप में या शाम की उस ठंडी सी हवा में, ढूंढो अगर तुम खुद को भी तो मैं मिलूं तुम्हारी हर एक दुआ में। चाय की प्याली से उठती हुई भाप में या शाम की उस ठंडी सी हवा में, ढूंढो अगर तुम खुद को भी तो मैं मिलूं तुम्हारी हर एक दुआ में। जब भी ठहरो किसी साहिल पर, जब भी ठहरो किसी साहिल पर, सागर की कोई लहर याद आए, भीड़ में भी जो सुकून तलाशो कभी, मेरा एहसास तुझे गले लगाए। भीड़ में भी जो सुकून तलाशो कभी, मेरा एहसास तुझे गले लगाए। कितनी खूबसूरत रचना है ये दोस्तों। यानी अपने आप को किसी में, किसी के हर कृति हर दिनचर्या में समाया हुआ देखना हमें कितना पसंद होता है। मोहब्बत में जब हम होते हैं, ऐसे ही खूबसूरत गीत भी अब आपको मैं सुनाता हूँ। अंदाज़े बयां ये समा और भी ज़्यादा प्यारा भरा बना देता हूँ। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक दोस्तों। दो बेहद खूबसूरत गजलों ने शाम को ठाट से सजा लिया है। अब कहना तो नहीं चाहिए किंतु कुछ ही देर में ये महफिल खाली हो जाएगी और मराठी में समाचार शुरू होंगे और फिर शुरू होगा आपका रिक्वेस्ट आर। रिक्वेस्ट आनी शुरू हो चुकी है हम तुम कार्यक्रम की। तो अपनी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है अभी तक आपने अगर भेजी नहीं हो तो हमें 8657661071 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। साथ में कुछ बेहतरीन यादें, कुछ ऐसे पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपके बहुत ही मेमोरेबल है, आपके दिल के करीब हो, तो हमारे साथ साझा कीजिए और हम भी इस FM रेनबो के माध्यम से उसे दुनिया को सुना देंगे। तो आप बैठे मत रहिए, बस व्हाट्सएप कीजिए और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1।

स्वागत है आप सभी का मेरे यानी आरजे आदित्य धाईगुड़े के साथ। आप हैं हम तुम कार्यक्रम, जो कि है पूरा का पूरा आपका, शत प्रतिशत आप ही का कार्यक्रम। आप ही फरमाइशें हमें भेजेंगे और मैं आपके लिए यहां से प्ले करूंगा और आप ये गाने डेडिकेट भी किए करेंगे। जैसे कि हमने दिल दे के देखो ये फिल्म का गाना भी, दिल दे के देखो जो गीत था वो प्रमोद चिंचोलकर जी उमरी अकोला से उन्होंने डेडिकेट किया था अपने फ्रेंड शिंदे साहब करके उनके कोई दोस्त हैं, उनके लिए उन्होंने डेडिकेट किया हुआ था। बाद में नेक्स्ट जो गाना था वादा कर ले साजना, वो प्रदीप अनंत कृष्णन जी ने अपनी माता जी का फेवरेट गाना है उनके, तो वो गाना उन्होंने उनके लिए प्ले करने के लिए फरमाइश की थी। अगले जो गीत है वो प्ले होंगे प्रणव शिंदे जी का, और उसके बाद जो है संजय दर्शन जी का भी गीत इसके बाद प्ले होगा। तो बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर, जो कि है म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक दोस्तों, आप ही के कार्यक्रम में हम तुम, और साथ में हूं मैं आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। तो अभी जो गीत हमने सुना खिलाड़ी फिल्म का, जो कि फरमाइश थी आकांक्षा मनोज सिन्हा जी अहमदाबाद से, और इसके बाद जो है मैं गौर कर रहा हूँ एक बात, अगर हम गौर करें आज के प्लेलिस्ट की, तो जो फरमाइशें जो हैं वो खास करके अक्षय कुमार के लिए आ रही है। सारी जो फिल्म मेरे पास लाइनअप है, जो गीत मेरे पास लाइनअप है, ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो है वो अक्षय कुमार जी के लिए बधाइयाँ देते हुए उनके लिए फरमाए हुए हैं। तो ढेर सारा प्यार जो है वो एफएम रेनबो के माध्यम से मैं एक बस जरिया हूँ। ये जो शुभेच्छाएँ या जो ग्रीटिंग्स है वो मैं अक्षय कुमार जी को पास ऑन करता हूँ इस गीतों के माध्यम से। सो बने रहिए, इसके बाद जो आ रहा है एक और धमाकेदार गीत, जो कि फरमाइश थी विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, उसके बाद जो है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा, बंटी बबली वर्मा, इनके भी एक फरमाइश उसके बाद प्ले होगी। साथ ही साथ मैं आगे इस वक्त ज़ायर नहीं करना चाहता, इसलिए अभी ही मैं आपको बताता हूँ कि कौन से गीत अभी लाइनअप है। चेतन कुमार जी का जो है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत गीत आने वाला है, और पंकज मोहड़ जी अमरावती से, उनकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। बने रहिए एफएम रेनबो 107.1, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक दोस्तों, हम तुम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अभी तक बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुने हैं और अगले जो गीत है वो लाइनअप है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा, बंटी बबली वर्मा, चांद जैसे मुखड़े पे इस गीत से, और साथ ही साथ उसके बाद जो है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, और इनसे हमें फरमाइश प्राप्त हुई है जो कि इसके बाद प्ले होगी। तो बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 पर, और इसके बाद इन गीतों के ठीक बाद इंग्लिश शो, इंग्लिश गानों का शो शुरू होगा जो कि है रॉक विद चौक। तो बने रहिए एफएम रेनबो 107.1।

0: 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी

0: के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
3: आज मेरी हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
2: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
2: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
2: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
2: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
2: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold, in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesia advance to quarterfinal after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The minister further informed that the government has decided to undertake 4 laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
12: The 7 high-density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to 4-line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled along with the Delhi to Guwahati corridor.
11: In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year.
13: Bullet train ka inauguration 2027 mein fix hai.
12: The inauguration of the bullet train is scheduled for 2027, with construction work progressing at a very rapid pace. Initially, the plan was to open a 50-kilometer section between Surat and Bilimora. However, this has now been extended to a 100-kilometer section from Surat to Vapi. At the same time, work on the bullet train itself is also progressing rapidly. The first coach for testing was completed and made ready last week, and the train is expected to be brought onto the tracks for testing by May or June next year.
13: Agle saal Mai June tak train patri pe aa jayegi testing ke liye.
11: Prime Minister Narendra Modi in a social media post highlighted that the 5 railway projects approved today will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Mr. Modi said the decision pertaining to 3 multi-tracking projects will encourage tourism, especially heritage and wildlife-related tourism, and lower logistic costs. New Delhi and Colombo today exchanged memoranda of understanding on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defence guns will strengthen the air defence architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalise the NCC Youth Exchange Programme between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defense Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anurakumara Dissanayake in Colombo. Both leaders virtually inaugurated three Bailey bridges constructed by the Indian Defense Forces. During the meeting, the two sides reaffirmed their commitment to work together for development of both nations while working jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. President Dissanayake recalled his interactions with Prime Minister Modi and reiterated that Sri Lanka would never allow its territory to be used for any activities inimical to India's security interests. Later, Mr. Singh also met Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya and exchanged views on several issues. Defence Minister Singh addressed Sri Lanka's military leadership at the Island Nations Defence Ministry in Colombo. Speaking on India-Sri Lanka maritime cooperation in the Indian Ocean region, Mr. Singh described India as Sri Lanka's Vishwamitra. He said the two countries were well positioned to serve as the closest partners in safeguarding peace, security and stability across the Indian Ocean region.
3: It is this spirit of interdependence that shaped India's approach to Sri Lanka as a true Vishwamitra, a trusted global friend. For India and Sri Lanka, holistic maritime security and a mutual prosperity are two sides of the same coin. Together, India and Sri Lanka are well positioned to serve as the closest partners in safeguarding peace, security and stability across the Indian Ocean region.
11: The Defence Minister arrived in Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka. This is Akashvani giving you the news.
7: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
11: Welcome back. You're listening to the news at 9. An 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies has departed for flood-hit Nepal. In a social media post, the External Affairs Ministry said the assistance includes NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and army team replenishment supplies. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has reached 1,365 as more bodies were recovered from the affected areas. The rescue teams continued to search for over 5,000 people who remain missing. Thailand's Interior Ministry has said Indian tourists holding ordinary passports are exempted from visa requirements and permitted to stay in Thailand not exceeding 30 days. The exemption will be implemented with effect from the 15th of this month. The Indian Embassy in Thailand in a social media post said visitors must carry a valid passport with at least 6 months validity from the date of arrival. It added that visitors are required to complete the Thailand digital arrival card within 72 hours before arrival through the official immigration website. India has condemned the reported Houthi attacks on Saudi sovereign territory, especially the targeting of civilian and economic facilities. In response to a media query on the attacks in Saudi Arabia, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such attacks that undermine regional security and stability and threatened freedom of navigation in the Bab al-Mandeb were unacceptable. Yesterday, Saudi Arabia accused Iran-backed armed group Houthi in Yemen of dangerous escalation after a series of attacks targeting the energy sector facilities and installations in the kingdom, leaving 73 people injured. Meanwhile, the U.S.-Iran conflict has sharply escalated, with both sides reporting attacks on military targets and commercial shipping. The latest incidents mark some of the most serious attacks on vessels since the conflict began, raising fresh concerns over the security of vital shipping routes and global energy supplies. More from our West Asia correspondent.
8: The U.S. says it has destroyed 5 Iranian oil tankers following Iranian missile attacks on a U.S. Navy ship. Iran has claimed that it attacked 2 U.S. Navy ships and 8 oil tankers near the restricted zone around the Strait of Hormuz. The UK MTO has confirmed that several merchant vessels were hit by disabling fire during the overnight military activity. The escalation has also pushed oil prices higher. Brent crude has crossed $100 a barrel today, while WTI has moved above $95. raising concerns that prolonged disruption to shipping and energy supplies could put further pressure on the global economy. Manish Shiva, Akashvani News, Dubai.
11: This is Akashvani. You are listening to News at 9.
7: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और

माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वो मोहब्बत भी कितनी अजीब थी, वो मोहब्बत भी कितनी अजीब थी, जो आंखों में बसी थी मगर मुकद्दर में नहीं थी। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगी महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और अब 11 से 12 गज़लों का सिलसिला रहेगा। खूबसूरत आवाज़ में ढली हुई कुछ ऐसी लाइनें जो सीधे असर दिल पर करती हैं, और कुछ ऐसे शायरों की बेहतरीन शायरी जो कई बार आपको उस दौर में ले जाएगी जिससे आप काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो दौर, फिर भी वो जगह, फिर भी वो शख्स आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाए बैठा है। तो शुरू करते हैं सिलसिला एक और खूबसूरत गज़ल आपके लिए फ्रॉम द मूवी तुम्बिन।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

प्रोग्राम चल रहे रंगी महफिल में हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। फासलों का फैसला आसान नहीं था, फासलों का फैसला आसान नहीं था। कौन कहता है कि दिल परेशान नहीं था। आंसू छुपे थे खामोशी के पीछे, कौन कहता है दर्द का निशान नहीं था। ख्वाब देखा था उम्र भर साथ का, कौन कहता है कोई अरमान नहीं था। खत्म हो गई जिंदगी मेरी, कौन कहता है मेरा नुकसान नहीं था।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तकदीर का मिला कैसा गालिब, तकदीर का मिला कैसा गालिब, जो हमारा होता तो कभी दूर ना होता। यहाँ एक और शायर ने लिखा है कि दूर जाना ही मोहब्बत की हार नहीं होती, दूर जाना ही मोहब्बत की हार नहीं होती, कभी कभी उम्र भर साथ रह जाती है। एक देखा जाए तो बहुत से पल, बहुत से लम्हे ऐसे होते हैं कि जिसमें हम जिंदगी भर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पल तो परिंदों की तरह हैं, उड़ जाते हैं। हाँ, उन पलों का एहसास, उनकी खूबसूरती और उनकी याद, वो अपने जहन में ताज़ा रखिए। और अगर कभी किसी याद ने, किसी लम्हे ने, किसी शख्स ने कोई तकलीफ पहुंचाई हो, माफ़ कर दीजिए। और अगर कहीं जख्म लगा हो दिल पर, तो उसे भरने की कोशिश कीजिए।

क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो। कोई बात दिल पर लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हो।

पेड़ों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

और चलिए अब लेते हैं आपसे इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से अपनों का भी ख्याल रखिएगा।

बहुत खूबसूरत शो के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अच्छा लगा प्रियंका जी आपका शो रंगे महफिल के बाद। कैलेंडर का एक साल और बढ़ गया है, मतलब अब दूसरे साल में हम कदम रख चुके हैं, दूसरे साल में नहीं दूसरे दिन में, मतलब सेम ईयर के। और जैसे जैसे वक्त बदलता है, वक्त आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। सिलसिले को कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो पिछला दिन आपको देकर गया है, और उस सिलसिले को बदस्तूर जारी रखते हैं। और इससे पहले कि ज़ीरो आवर शो करें आपका वेलकम, आपका स्वागत, डाल लेते हैं एक नज़र उन मुख्य समाचारों पर जो इस घंटे ने दर्ज किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से दक्षिण भारत में रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ होगा। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि वह कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में 6 लेन वाले पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और चेहरे के सत्यापन के लिए सैंडबॉक्स जारी किया है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमले की निंदा की और कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में हाजिर होगा आपका अपना चहेता शो जीरो आवर शो। वक्त बता रहा है कि अब जल्दी से हमें उस पायदान पर बढ़ना चाहिए और आपको ले चलना चाहिए हसीन गानों की उस दुनिया में जिसका इंतजार आप सभी करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिन की और बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जिसे लेकर आया हूं मैं रजत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए अब सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से दक्षिण भारत में रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ होगा। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि वह कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। माफ कीजिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेटमैनशिप अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और चेहरे के सत्यापन के लिए सैंडबॉक्स जारी किया। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का 3रा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया हॉकी कप में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 1:04 और 10 सेकंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक आपके लिए और ये कुछ खूबसूरत से गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरे यानी अलमास रजा के साथ कार्यक्रम है सुहानी रात।

बहुत ही खूबसूरत शो रहा इससे पहले, और अब आने वाला जो शो है उसका भी इस्तकबाल करने के लिए आप तैयार हैं? इस्तकबाल नहीं, हमारे साथ झूमने के लिए, रात को एंजॉय करने के लिए, सुहानी रात के बाद आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारी यादों में बसी हुई हैं, भुलाए नहीं बन रही हैं, है ना? आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। नियमित प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उससे पहले पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से दक्षिण भारत में रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि वह कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और चेहरे के सत्यापन के लिए सैंडबॉक्स जारी किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक पर भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा भी आप जुड़े हैं हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर, सारी दुनिया के हर कोने हर हिस्से तक पहुंचने के लिए। अगर ये ऐप आपके पास अभी नहीं है तो इसे शीघ्र अतिशीघ्र डाउनलोड कर लें और एंजॉय करें, लुत्फ उठाएं हमारे हर एक कार्यक्रम का। मैं हूं रजत, शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने मेरे साथ, हसीन तरीन गानों के लिए, 90 के दशक को एंजॉय करने के लिए एक बार फिर से, और बताने के लिए कि रात को बेवजह रात यूं ही नहीं कहा जाता। रात असल में हमें ज़िंदगी की तन्हाइयों को एंजॉय करने का, उन्हें भुनाने का एक मौका देती हैं। भुनाने का मेरा मतलब उन यादों को हम अपने सराहने रख के सो पाते हैं, लेट पाते हैं, पढ़ पाते हैं, जिन यादों को हम कहीं पीछे छोड़ आए थे। और उन यादों के जो दरख्त हैं वो आज भी उतने हरी, उतने ही ओस से भीगी हुई हैं जितना आज से वो कुछ साल पहले हुआ करते थे। वही मौका, वही रंगत, वही नफासत देने के उद्देश्य से, उसी मंसूबे से हम आते हैं ये प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है भुलाए ना बने। आज मैं हूँ आपके साथ रजत, बस कुछ देर में पेश नजर है आपके।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से दक्षिण भारत में रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरूट से बातचीत की। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि वह कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना नए प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। और अब कुछ समाचार खेल दुनिया से। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया हॉकी कप में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:03 और 38 सेकेंड्स। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और बताइए साथियों, कैसे हैं आप? आशा है आप खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए इन गीतों को।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

श्रोता सुन रहे थे मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अलमास रजा के साथ। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजे आपके साथ होंगे रजत शर्मा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।

बहुत शुक्रिया अलमास इस खूबसूरत बेहद खूबसूरत गानों से सजे प्रोग्राम के लिए। अब समय हो चला है अब तक की मुख्य न्यूज़ हेडलाइंस अपने

श्रोता मित्रों तक, अपने साथियों तक, अपने लिसनर्स तक पहुंचाने का। ठीक 4 बज चुके हैं घड़ी के मुताबिक। इससे पहले कि सारे गामा मैं लेकर आऊँ आप सभी तक, डालते हैं एक नज़र इस घंटे की मुख्य खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश में रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलवे परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि वो कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू के लिए रवाना हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी राज्य में निवेश लाने और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE के दौरे पर हैं। राजस्व सूचना निदेशालय ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का 3रा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कल कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी कप में, इसे फिर से सुन लीजिए, जूनियर एशिया हॉकी कप में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा हम उपलब्ध हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, जिसके जरिए आप देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से हमें और हमारे हर शो को सुन सकते हैं। 4:02 हो चुके हैं, कुछ ही पलों में हाजिर है प्रोग्राम सारे गामा। नए पुराने गीतों को मिलाकर आज का तड़का हमने कुछ खट्टा मीठा लगाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये बेहतरी के साथ प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा और आपको पसंद भी आएगा। स्वागत है हमारे सभी सामयिन, हमारे सभी श्रोता मित्रों का इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सारे गामा और मैं हूँ रजत शर्मा इस शो के साथ अगले पूरे घंटे तक। हार्दिक अभिनंदन।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से देश में रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से लाखों लोगों को लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि वो कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू के लिए रवाना हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण बांझी राज्य में निवेश लाने और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दौरे पर हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया हॉकी कप में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 5:02:43। और लीजिए श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन।

जिन पते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमंगलैः प्रसरताम्।